0: आता है पसीना।
1: बाप रे,
0: कल मैंने देखी अजब हसीना। प्यार में उसके धड़के मेरा दिल चलता है सीना धक धक धक। बात वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों खफा खफा से।
1: मर जाऊं,
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं।
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

0: Don't forget to pack peace of mind. This is Alfred and travel insurance from insurancemarket.ae. 800-ALFRED. Insurancemarket.ae.
1: This is Talk 100.3.
2: Hello and welcome to DSB Talk, Sport and Business. I'm Neil Oja on Talk 100.3. We're talking about everything that is IPL. And why? Because, ek din ka break mila hai IPL se. Aur phir kal se shuru ho jayega the playoffs. Jisme pehla qualifier kal khela jayega between RCB and Gujarat Titans. And then there will be an eliminator between Rajasthan Royals and Sunrisers Hyderabad. The team that loses will be eliminated. But will it actually be Rajasthan Royals? Or will they be able to crush the hope and the efforts of Sunrisers Hyderabad? Because it's never too easy. It's never too easy to be a team that reaches the top four, and the hopes, the expectations from within the dugout, from the crowd, from the fans is just immense. And that is exactly what everyone is expecting, not just from the big names, but from a youngster, Vaibhav Suryavanshi, for Rajasthan Royals. And this has been his effect on Rajasthan Royals. From the time he joined to today, there has been a massive upheaval. Yani ki kis tarah se unka effect raha hai. Aapko pata hai na, when the scouts actually spotted Vaibhav Suryavanshi, the management discussed that at the auctions, we'll keep 10 crore rupees aside for him. 10 crore rupees aside pe rakhenge. Jitne mein bhi aaye, ye ladka chahiye. और फिर बिडिंग हुआ. जब बिडिंग हुआ तो ये बिडिंग में क्या हुआ पता है आपको, कि मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स ने आपस में बिड करना शुरू किया. बिडिंग हो रही थी, फिर मुंबई इंडियंस बाहर हो गई, राजस्थान कंटिन्यू, फिर दिल्ली घुस गई. दिल्ली बिडिंग कर रही है और राजस्थान बिडिंग कर रही है. 1 करोड़ दिल्ली ने बिड किया. 1 करोड़ के बाद राजस्थान ने कहा 1 करोड़ 10 लाख, और फिर वहाँ पर दिल्ली रुक गई. दिल्ली ने अपना हाथ रोक लिया, बोला नहीं बस अब इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते. पर आप सोचिए कि इफ दिल्ली वुड हैव कंटिन्यूड and picked up Vaibhav Suryavanshi, what would have been that story? Hai na? Alag hi ek pura kahani ban jati. But nahi, aisa nahi hua. Delhi stopped their bidding process because everyone comes in with a budget, right? Jaise maine aapko pehle hi bataya tha that Rajasthan Royals had decided that we will actually go for as much as 3 crores on this. 10 crore sambhal ke rakho, but 3 crore tak aap ja sakte ho. Ab ये किस तरह का प्लान होता है, क्या थॉट होता है कि अगर दूसरे प्लेयर्स ले लिए आपने एक्सपेंसिव, तो फिर आपको अपना बजट चेंज करना पड़ता है. ये सारी चीज़ें होती है ऑक्शन में. ऑक्शन में ऐसा नहीं तो कि बस ये प्लेयर है तो उसके ऊपर सारे पैसे निछावर कर दो. नहीं, आपको प्लान करना पड़ता है. बट फॉर अ 13-year-old व्हेन ही वाज पिक्ड अप टू कीप 10 crores statistically and then because of the way the auction moved to say कि ठीक है हम 3 करोड़ तक जा सकते हैं इसके पीछे, to actually do that, and 1 crore 10 lakh mein unko mil gaya to chalo 2 crore 1 crore 90 lakh bach gaye. But Suryavanshi ne kya kiya, aate hi became the youngest centurion last season, aur is season yani to bhai kamal kar diya. Jo bowler dekha usko pehle ball pe chakke mare, Bumrah ko pehle ball pe chakka, fir teesre ball pe chakka, ye mazak hai, hai na? And this kid doesn't really worry about his centuries. Kyo main century karunga, nahi 93 pe to bhi bade shots maarne ki koshish kar raha, out ho jata hai, farak nahi padta. But he did end up scoring a century in this edition of the Tata IPL as well. What has been Vaibhav Suryavanshi's effect on Rajasthan Royals? Here is a conversation right here on TSB.
3: काफी अच्छा लगता है, तो proud का ही moment है. और हाँ, काफी अच्छा लगता है जब इतने seniors cricketer, ex cricketer जब बात करते हैं, हमारे coaches जब बात करते हैं, तो काफी अच्छा लगता है. confidence भी आता है जिससे मुझे, और मुझे help होता है game में. बस यही try करता हूँ, जो मेरा flow चल रहा है चलते रहे, नेक्स्ट मैच में, उसके अगले मैच में, जब तक टूर्नामेंट चल रहा है. और मैं जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ टीम के लिए, उतना हेल्प होगा.
4: Slow bounce now. 56 for Suryavanshi. This one disappears.
3: अभी आपने ही बताया, नहीं अच्छा लग रहा है, और ट्राई करूँगा अभी और मारूँ अगले गेम्स में भी, और टीम के लिए अच्छा करूँ. हम लोग सबके माइंड में यही था कि जो हम करते आ रहे वही करें, और इन्जॉय करने को देखे, प्रेशर ना ले, अच्छा क्रिकेट है, अच्छा खेले, और अपने स्ट्रेंथ को बैक करे सब लोग. बस यही अगले मैच में ही फोकस है.
2: क्या बात है यार, वेरी स्वीट. आई मीन दिस किड, आई हैव मेट हिम, यू नो, 2 साल पहले की बात है, मैं मिला था यहाँ पर जब वो आईपीएल के लिए नहीं चुना गया था, तभी की बात है. एंड you know, at that point in time as well, he was so humble, so focused completely. I have a conversation of him, you know, jahan pe humne baat ki thi, cricket ki baat ki thi. So I'll try and play that audio as well. But I can tell you one thing, that Vaibhav Suryavanshi is one of those cricketers jo aap jitna फ्यूचर में देखोगे ना कि भाई ये कुछ बड़ा कर सकता है एंड उसके लिए यू विल हैव टू यू नो एक्सपीरियंस वैभव सूर्यवंशी इन टाइम्स टू कम बिकॉज इट्स नॉट समथिंग दैट कैन हैपन ओवरनाइट दैट्स नॉट इट्स नॉट समथिंग दैट विल हैपन यू नो इट्स नॉट समथिंग दैट विल हैपन ऐसे ही बस से चलते चलते हो जाएगा 15 साल की उम्र में उन्होंने चालू किया 14 साल की उम्र में चालू किया है अगर आपने आप उनको अंडर 19 वर्ल्ड कप में देखा है तो ये भी आपने नोटिस किया होगा कि यू नो अंडर 19 वर्ल्ड कप में 175 उन्होंने बनाए थे फाइनल्स में सो इट्स नॉट समथिंग दैट दैट हैपेंस एवरी डे राइट 175 रन्स कि आप जाके इतने सारे रन्स एक साथ में बना दो ऐसा नहीं होता है इट्स नॉट फॉर एवरीवन नॉट फॉर समवन हु कैन डू दिस एवरी डे Right, went on to win the under 19 World Cup, and obviously we definitely hope that he becomes one of those big names. I'll try and find that interview that I had done with him during the Asia Cup, under 19 Asia Cup. I'll try and find that interview and play it here. But conversation also about another under 19 World Cup winner from India, 2008. Virat Kohli ke saath mein unhone under 19 World Cup jeeta tha, and he is one of just those three players who have. Played all 19 season. एक तो विराट कोहली एक रोहित शर्मा और तीसरे हैं मनीष पांडे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेला है एंड क्या प्लेयर है यार जब ये खेलते तो ऐसा लगता है कि ओफ यार भाई ऐसा प्लेयर कैसे बन सकता है कोई बट क्या उनको उतने चांसेस मिले जहां विराट कोहली ने एक साइड पे 280 प्लस मैचेस खेल लिए हैं मनीष पांडे ने सॉरी 280 प्लस मैचेस खेले हैं वहीं मनीष पांडे ने सिर्फ 180 मैचेस खेले हैं जहां विराट कोहली के 9000 रन बन चुके हैं वहीं पर मनीष पांडे के सिर्फ 4000 रन्स बने हैं नॉट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टैलेंट इट्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी बट हैज ही गिवन अप नो दिस अ लिटिल कन्वर्सेशन अबाउट मनीष पांडे प्लेइंग फॉर केकेआर
5: यू कीप टॉकिंग अबाउट यू नो 19 इयर्स इन द आईपीएल आई स्टिल फील आई एम 19 यू नो दैट नंबर कम्स टू माय हेड
6: यू लुक लाइक दैट
5: थैंक यू सो मच
7: मनीष पांडे हैज टेकन ऑन द बॉलर द ब्रेव शॉट टू प्ले
6: द टैलिस्मैन ऑफ केकेआर
7: व्हाई दैट इज ह्यूज That is a crack-a-doom 50 for Manish Pandya, the ground on which he plays all his first-class cricket.
6: 19 years in the IPL, Manish, what was going on in your head when you went to bat?
5: Great opportunity for me, as you rightly said. 4 games, I was paired up, you know, waiting for my chances. But I think the way we batted the last 4 games was unbelievable, you know. And yeah. You kept on pushing me down, you know, in the order. So that's completely fine. I mean, you know, yeah. as we say, we keep changing. We use the opportunity left, right, in the middle. Yeah. That's the game plan. So that's what you did.
7: Just eased over the bowler's head. So easily done.
5: When you said I was batting number 3, then again, you know, I started preparing myself as soon as I was coming out of the ground and talking to Aju, I really felt that, you know, he just kept on telling me about having a small partnership, watching the ball close, and that's what I did, I think. So that partnership between me and Aju and then me and Rahman was really crucial, very important, which took us to, you know, last 25 balls, 25 required. So I think the way Rinku and, you know, Anukul finish also was really great.
7: That's it. He's finished it off.
6: For a guy who's played for so many years, you obviously have the experience, but talk to us about your preparation. What's it been like coming into the tournament? You know, this year you obviously didn't play a lot of first-class cricket, but how have you kept yourself fit at this age? You're still one of our best fielders, take brilliant catches in the field, even today an outstanding catch. So talk to us about your process.
5: It's everyday process, preparing for IPL. You are mid-season, you are just finished the main season. It's me going, working on fitness, and you know, I like to bat, spend time on the wicket. So playing only this tournament, which is really big, I just thought I was preparing for you know, from a long time for this one, and you guys had shown a lot of trust in me as well. So, you know, play well and win the game.
7: And that has been nicely played.
5: As you said, I wasn't part of the first 11, but I wanted to really make sure that, you know, I was preparing really well. You guys gave me an opportunity. I thought I was batting really well. You know, I'm pretty sure that made you guys, you know, push me in the 11 in the last 6. So I'm really happy for that. And as you said, process is very important. You keep playing well, keep working, because you never know when the chance comes and you have to grab it from with your both hands.
7: The snowball straight back for 4. And that'll be 4 more.
2: That was Manish Pandey, and जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि मनीष पांडे भी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं 2008 का और 2025 का जो वर्ल्ड कप 26 का वर्ल्ड कप जो है वो जीता वैभव सूर्यवंशी और आयुष मात्रे ने एंड वैभव सूर्यवंशी के साथ में I got a chance to speak to him during the Asia Cup, where he was here, and I was doing the commentary for Asia Cup for the television broadcasters. So, tabhi jo hai humne ek interview kiya tha Vaibhav Suryavanshi ke saath mein. I would want to play an excerpt of that interview right here for you to understand the psyche of a 13-year-old. Mind you, tabhi wo IPL mein nahi aaye the. So this was a pre-IPL interview of Vaibhav Suryavanshi before Vaibhav Suryavanshi got into the eyes of everyone. The mindset was so clear. Aisa nahi ki media trained hai ki jawab kya dena hai, kuch nahi. Ekdam raw, ekdam honest. Sare answers Vaibhav Suryavanshi ke yahan par before he became Vaibhav Suryavanshi, the IPL superstar, right here on TSB with obviously yours truly. Maine interview kiya to main isliye suna raha hu. Suniye dhyan se.
8: A guy who came here and owned the Sharjah Cricket Stadium was this 13-year-old lad, Vaibhav Suryavanshi. 67 of 36 deliveries, even today, 5 sixes is alongside me. Vaibhav, fantastic knock. Yaar, kya batting kari aaj aapne dil khush kar diya.
3: Thank you, sir. Aaj hamara last year hum semi-finals haare the, to thora is match mein hame zyada effort dena tha kyunki 3 saal se hum champion nahi ban pa rahe. To is baar hamari team bhi achhi hai aur sab ladke efforts de rahe hain. तो इस मैच में भी हमारा काफ़ी अच्छा एफर्ट था फील्डिंग में, फिर बाद में बैटिंग में अच्छा स्टार्ट मिला हमें, फिर यही हम कंटिन्यू करेंगे फाइनल्स में कि इसी तरीके का गेम हम फाइनल्स में भी खेले, इससे ज़्यादा अच्छा खेले.
8: आपको आपका पहला छक्का याद है इस ग्राउंड पे, स्टेडियम के बाहर आपने मार दिया था, ऐसे बहुत कम छक्के लगते हैं, वो बाद में आके रिप्ले देखे आपने?
3: हाँ, उस मैच के बाद तो हाईलाइट्स देखते हैं. फर्स्ट बॉल मैंने छक्का मारा था, हाँ बाहर मारा था, वो उसने बॉल फेंका था मारने का, मेरा यही इंटेंट रहा था अगर बॉल मिले तो फर्स्ट बॉल भी मैं मार देता हूँ.
8: आज भी आपने एक छक्का मारा बहुत तगड़ा ओपन करते हुए. सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं आप?
3: मैं मैच से पहले ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ.
8: अरे आपने एक तो सीक्रेट बता दिया आपने अपना. बट ओवरऑल आप देखें कि एट अ वेरी अर्ली एज आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, इतना अच्छा आप खेल रहे हो, क्या जर्नी आप देखते हो अपने आपके फ्यूचर में?
3: मेरा तो यही सपना है कि इंडिया के लिए खेलूं, सीनियर इंडिया के लिए अच्छा करूं, कंट्री के लिए यही सपना है मेरा. बाकी सीनियर इंडिया के लिए खेलना यही सोचा हूं, बस उसी तरीके से अब मेहनत भी करना है आगे के लिए.
8: मेहनत जो होती है वो क्रिकेट की भी होती है, फिटनेस की भी होती है. कितनी ट्रेनिंग करते हैं, कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं रोज?
3: रोज मेरा प्रैक्टिस ऑलमोस्ट 5 to 6 hours रहता है.
8: 5 to 6 hours की ट्रेनिंग करते हैं?
3: यस.
8: बाकी आपके दोस्त वोस्त आपसे नाराज़ तो नहीं होते कि मिलने नहीं मिलते हो?
3: नहीं, मैं वैसे भी मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है, जो भी है क्रिकेट में ही है मेरे सारे फ्रेंड्स, क्योंकि बचपन से मैं क्रिकेट ही खेल रहा हूँ, स्कूल भी उतना जाता नहीं हूँ, तो मेरे जो भी फ्रेंड्स है क्रिकेट में ही है, तो फिर सब ग्राउंड पे ही मिलते हैं, तो कोई नाराज नहीं होता क्योंकि सब प्रैक्टिस करते हैं साथ में ही मेरे.
8: Fantastic. What a bright young kid he says that all his friends are within the cricketing fraternity and wants to represent the senior national team. Secret does not have breakfast before the games.
2: What an interesting conversation, isn't it? You know, सारी चीज़ें उनसे बात करी, और ये तब की बात है जब वैभव सूर्यवंशी IPL superstar वैभव सूर्यवंशी नहीं बने थे. It's an exclusive conversation that I had with him. This one was for the television broadcasters. So मैंने उठा लिया, मैंने कहा मैं आपको सुना सकता हूँ ये. I'll try and put it on my socials as well so that you can have a look at it as well. आप सोचे भाई तब से ये बंदा जो है माइंडसेट क्या था क्लियर, उन्हें एक बताया मैं देखता हूँ अगर पहली बॉल पर ही छक्का मारने का गेंद होता तो मैं छक्का मार देता हूँ, सोचता नहीं हूँ मार देता हूँ. And that is exactly what we saw throughout this tournament. Biggest of the bowlers, कोई फर्क नहीं पड़ा वैभव सूर्यवंशी के सामने कौन गेंदबाजी कर रहा है, चाहे फिर वो जसप्रीत बुमराह ही क्यों ना हो, वर्ल्ड क्लास बॉलर, अभी अभी वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, वर्ल्ड कप में 14 विकेटें ली हैं जसप्रीत बुमराह ने, पर nothing that deterred the mindset of this young so वैभव सूर्यवंशी who thought कह रहे भाई मैं इनको कैसे मारूं ये नहीं. वो हम यू नो क्रिकेट में नॉर्मली एक कहावत है कि डोंट प्ले द बॉलर प्ले द बॉल, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वैभव सूर्यवंशी डिड. ही डिड नॉट रियली वरी अबाउट कि कौन बॉलिंग कर रहा है.

0: This is Talk 100.3.
1: सुनो और गौर से सुनो। अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।